0: जब रतपुर बोले बारिश क्यों ना क्या उठाई।
1: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल लावांगा, आप जीआं जीआं कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा मोहताज नहीं हां,

दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दिया खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा

नहीं, मानुष माना सदा ही प्यार करना है। मां दा कोई कोई कोई अल्टरनेटिव नहीं दोस्तों। गल इदा वे कि कुछ शायर लिखते ने कि जो मर्जी कर लो तुसी मां दा देण नहीं दे सकते, पर मां ते एहसान कर दी नहीं, उदा देण हा की देना, वो ते अपना फर्ज निभाउंदी है। मां ते साडे कदी किसे मां ने एहसान कीता? वो ते अपना फर्ज निभाउंदी है मां। मां हां ओदी तुलना जे उपर रब हैगा ते ओदे नाल कीती जा सकती है। रब नू अपनी पब्लिक प्यारी, जनता प्यारी होवेगी, वो सारयां दा ख्याल रखना चाहुंदा होवेगा, पर रब घर घर ते पहुंच नहीं सी सकदा, इस करके रब ने घर घर मां भेज दिती। मां रब दी अंबैसडर हुंदी है धरती दे उत्ते। ते इंसाना दी ते गल चलो एक पासे रही, तुसी किसे जानवर दे बच्चे नू किते हाथ ला के विखा दियो? मां दे हुंदे आ छोटे छोटे जानवर, शेरां नाल भिड़ जांदे, गिदड़ां नाल, लकड़ बग्गियां नाल, रिछां दे नाल अपने बच्चों तों। मां दी जान अपने बच्चों च हुंदी है। ते गल इस तरह वा भाई, मां कोशिश करो वध तों वध कि अपनी मां नू प्यार। ओ बुढ़ापे वेख्या किस तरह यार, साडियां मावां सानू साडा मतलब कि ओ माल मूत्र साम निक्कियां हुंदियां तों लैके निक्के बच्चा जरा कि बीमार हो जाए ना छोटा जिहा, ते ओ बेचारा एक्सप्रेस ते कर नहीं सकदा हुंदा, मां ओदे सराहणे सारी रात बैठी रहेगी, पट्टियां ठंडियां कर करके ओदे सिर मथे ते तरेगी, ते रब अगे अरदासां कि हे परमात्मा मेरी जान कढ लै, मेरे पुत्र या मेरी धी नूं रमाना च। हाउ स्वीट है। ते वड्डे हो के तुसीं किस तरह दा व्यवहार करदे हो? सारे नहीं, बहुत लोग अपनी मां नूं प्यार करदे ने, इज्जत करदे ने, नो डाउट। मां दे अगे सिर झुकदा हर एक दा। ए देवी देवते भी मां दे ही पैदा जम्मे ने। सब तो वड्डी मां है, देवी देवते भी उहदे थले आउंदे ने। ते मैं दोस्तों दुनिया विच जिन्नियां मावां ने, बेशक उन्हां दी उम्र 18-19-20 साल ही होवे, मैं उन्हां सब मावां दे पैरी पै के ते अपने प्यार दा इजहार करदा, लव करदा। हां जी, मां बारे की कहिए, लफज ते कोई लभण नहीं रहे। कई चीजां नूं ही एक्सप्लेन घंटियां च कर जाने आ, कई घंटा घंटा अद्धा अद्धा घंटा 15-15 मिंट ला देने आ, पर मां वास्ते लफज गायब हुंदे जा रहे ने। सच्ची ते गल इस तरह दोस्तों कि मैं ना मां दी शान विच एक गाना क्यू कीता, ते ओ गाना जिहड़ा हैगा आ लो जी, मैं पहला गाना पेश कर लां ते फिर मां बारे गल्लां बातां साडियां चलदियां रहणगियां, ते आवाज भी तुसीं पछाण लैणी है, तुम्बी भी तुसी पछाण लैनी है। आओ लो जी, दरवेश कलाकार की कह रहा है। वाह वाह वाह, दोस्तों गा रहे ने दरवेश कलाकार यमला जट जी हुनी। हां जी, मां दिया सिफतां किस तरह करते ने, आ लो जी जरा सुनो तुसी। ते ए गाना सुबा सिंह खैरा जी तुहाडे नाल।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक जिहड़ा ये मैं आप जी दी नजर कर रही हूं विशेष करके,
0: थैंक यू जी,
1: जिहड़ा हुण मैं सुनाउण लगी
0: हां जी

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: आजा पिया तोहे प्यार दूं, ओ गोरी भैया तोहे प्यार दूं।
1: वाह वाह वाह राधा जी, आज मदर डेरी है तुहानू पता होना
0: जी।
1: हां जी,
0: हां जी, बिल्कुल पता है
1: जी। दुनिया दी सोहणियां मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे
0: जी? बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
0: मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक है।
0: हां जी, उच्च सचिन छोटा जिहा सीगा ते उदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
0: ते ए गीत वैसे तो सारे मावां लई इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: काफी।
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा,
0: ते जेड़ा मैं आप जी नूं सुणाउण लगी ओ किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि मेरा शौक रहा ते मेनू तो फिर बचपन के सारे गीत याद
1: ने। तुहानू याद ने जी, मैं बिल्कुल
0: जी। ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मेरे ख्याल कि 250-250 गीत मेनू मुंह जवानी बचपन दी याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी
0: जी। हां जी, बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है। मेरी मां ने कहा गुड्डी तेनू ए गीत याद है, तू ए गीत सुना।
1: अच्छा, तुहाडा नाम तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी आ।
1: अच्छा, हुण वी तुहानू गुड्डी मिलदे?
0: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो?
1: आजा
0: हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नाम नाल मुखातब करांगा। बहुत सोहना नाम है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा है कुड़ियां दे नाम
0: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनू गुड्डो कहंदे सी। चार नाल
1: गुड्डो गुड्डी। हां जी हां जी
0: हां जी। ते ओ गीत मैं आप जी ने
1: दोहराना चाहुंदा। नानी नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी।
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ उरे आई। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा,
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
0: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਚਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਰੇਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ,
0: ਮੈਂ ਚੁੱਪ।
1: ਹਾਂ,
0: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबोलाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाई तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, ओ लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3258-732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301

आज भी दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत स्रोतियों ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला भाखदे मसले लिआउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला कईयां मथियां ते त्यूड़ियां लबां ते हासे लिआउण वाला तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुणाउण वाला पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार मिठे बोलां नाल लैस आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स परवाज रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन लबा ते हासे लियाउण वाला तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुणाउण वाला पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार मिठे बोलां नाल लैस आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स परवाज रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ हाउ डू यू सी दिस वंडर।

रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हाँ, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन। एक्सपोज योर सेल्फ, हाउ डू यू सी दिस वंडरफुल लवली फनी और स्वीट वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस। वी आर ओनली फोन कॉल अवे। बिल्कुल दोस्तों, असि फोन कॉल अवे या थोड़े तो गल इस तरह भाई, अज असी कॉल नहीं लेंगे सैटरडे, कल है संडे, कल है जी शायरो शायरी का प्रोग्राम, उहदे विच तुहाडा ही प्रोग्राम है, तुहाडियां ही कॉल लईयां जाणगियां। अज पहले आवर विच दोस्तो मैं इनकलाबी कवि संत राम उदासी जी हुणा ते गलबात करांगा, उहदियां दुश्वारियां ते, उहदे ते जो जुल्म कीता गवर्नमेंट ने, सारा कुछ जानदिया होया भी उहनू लावारस करार दे के स्टेशन दे उत्ते ही अग ला दित्ती गई। ते उहदा भी जिहड़ा जात पात छूआ छात है साडे समाज विच कोड़ है, असल च जिन्हां ने यह शुरू ही किया कोड़ ओ ने साडे समाज दे विच। ए लोग ते बेचारे कामे ने, वर्कर ने। ते अगले आवर दे विच दोस्तो साडे मशहूर ते निरपक्ष पत्रकार बलवीर बब्बी जी हुणी आउणगे, पंजाब पंजाबीयत दे बारे गलबात करनगे हमेशा दी तरह। वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.pravasradio.com। बिल्कुल जी, www.pravasradio.com। दोस्तों तुसी अपने प्ले स्टोर ते जाना, ऐप डाउनलोड करो, साडा लोगो येलो रंग दा दो स्पीकर ने उहदे उत्ते वजना शुरू हो जाएगा, ते जिहड़े सज्जन मित्र सानू सुणदे ने ओ अपने पंजां सत्तां दोस्तां नू साडी ऐप डाउनलोड करवाउण, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल। ते मैं हां जी आपदा होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा। स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम अलैकुम, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लेनेट। दाल दुनिया दे मालका दस ता सही, दर दर नचाउना क्यों भुलिया नू। दाल दुनिया दे मालका दस ते सही, दर दर नचाउना क्यों भुलिया नू। टोए अमीरां दे नोटां नाल भर देना, भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू। पर टोए अमीरां दे नोटां नाल भर देना, भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू। बाद जातां नू दरवेश बना देना, ते चिकनी सुटदा मोती अमलिया नू। गदार माण दे इज्जतां ते पातशाहियां, सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू। सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, तुसी सुन रहे हो जी प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट। अज सैटरडे है 25 अप्रैल, ते टेम्परेचर भी ठीक ठाक है जी, अज 17 का ते टाइम साडी सोहनी जी स्टूडियो

एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये भुसत जात अपने ही जाल में फसत जात हम मरत

0: गीत होर सुन दे जी सिंधे छिंदे
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया भाई
2: देखो ना जी इतनी सोनी जन लेके आया
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया वो ताली जेतो वाले ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई जिंदा बहुत पैदा पैदा हो जाए
2: मालको ला दें पैसे नहीं लेने सोचो
1: भाई वाह वाह वाह

हुआ खत्म घर में जो था घी का डिब्बा, वो शैता की तुम बेटी भूतों की खाला, मेरे घर का तुमने निकाला दिवाला, मेरी तुमने फैशन से लूट।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: Guardi, va, porco, porco.
1: आजा पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी मैया तो पे वार दू, इसलिए तू इतना उदास।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खाक के नाल

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो प्योर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑन

with your own watching eyes and experience. Is this world really wonderful or ugly world? What do you think? We are only phone callers. आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो ईयर ऑन रेडियो स्टेशन। एक्सपोज योर सेल्फ हार्ड यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस। इज दिस वर्ल्ड रियली वंडरफुल और अगली वर्ल्ड? व्हाट डू यू थिंक? We are only phone callers. दोस्तों बिल्कुल असी तुहाडे तो फोन कॉल रहे ही हां।